जीवन सिखाता है गिरकर संभल जाना, अंधेरों में भी उम्मीद का दीप जलाना और मिलजुल कर जीना। सबसे जरूरी जो चीज है वो जीवन यही सिखाता है कि मिलजुल कर कैसे जीना है।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जल्द मुलाकात होगी, खुश रहिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ഇനി കേൾക്കാം സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹി റിലേ.
1: നമസ്കാർ, ആകാശവാണി സമാചാർ പ്രഭാത് കെ സാത്ത് മേ ലവ്ലി നിഗം. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्यवाही के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक. भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया. अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा. मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया. देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका. और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया. अब समाचार विस्तार से. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है. इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा. मतगणना 24 मई को की जाएगी. एक रिपोर्ट.
2: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है. 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा. वोटों की गिनती 24 मई को होगी. चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है. पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है. कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था. अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया. कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र.
1: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए. मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए. कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है. मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी. निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं. तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे.
3: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो. मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी. स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं. राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है. महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही. चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा.
1: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी. परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी. नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से NEET UG परीक्षा का आयोजन कर रही है. एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं. उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है।

0: रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
1: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है, शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उपरक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, सीबीएस और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी.डॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मस्क के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा।

0: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
1: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार, कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्यवाही के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉटर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: പഞ്ചായത്ത് വികസന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ ദേശീയ ശില്പശാലയ്ക്ക് നാളെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ തുടക്കമാകും. അടിസ്ഥാനതലത്തിൽ ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത ആസൂത്രണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ശില്പശാലയുടെ ലക്ഷ്യം. അഖിലേന്ത്യാ മെഡിക്കൽ ബിരുദ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് ഇന്ന് നടന്നു. പരീക്ഷയ്ക്ക് ദുബായിലും ഷാർജയിലും കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. മെഡിക്കൽ ബിരുദ കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി 2019 മുതലാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തിവരുന്നത്. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിയോഗിച്ച നയതന്ത്ര സംഘത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായി നിക്സ് സ്റ്റുവോർട്ടിനെ നിയമിച്ചതായി വൈറ്റ് ഹൌസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രത്യേക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായാണ് പരിചയസമ്പന്നനായ നയവിദഗ്ധൻ നിക്സ് സ്റ്റുവോർട്ടിനെ വൈറ്റ് ഹൌസ് വിദഗ്ധൻ നിക്സ് സ്റ്റുവോർട്ട് എന്ന വൈറ്റ് ഹൌസ് വക്താവ് ഒലിവിയ വെയിൽസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഫ്രാൻസിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച കുടിയേറ്റ ബോട്ട് തീരത്തേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി രണ്ടു മരണം, 16 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ബൊളോൺ സർ മെറിനടുത്തുള്ള ഹാർഡ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് രാത്രി 82 പേരുമായി പുറപ്പെട്ട ബോട്ടാണ് എഞ്ചിൻ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. സുഡാനിലെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ 5 മരണം. വൈറ്റ് നൈൽ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്ന് ഓംദുർമാനിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന വാഹനത്തെ സുഡാനിലെ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗമായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് സൂചന. ഐപിഎൽ ക്രിക്കറ്റിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് 7 വിക്കറ്റ് ജയം. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെ ബാറ്റിംഗിന് അയച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ മറ്റന്നാൾ വരെ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിൽ തീപിടുത്തം. വെള്ളയിൽ ജോസഫ് റോഡിലുള്ള റെഡ് സ്റ്റാർ പ്രസിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. കടലാസ് റോളുകളും ഷീറ്റുകളുമെല്ലാം കത്തിനശിച്ചു. ഞായറാഴ്ച പ്രസിന് അവധിയായതിനാൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായ സമയം ജീവനക്കാർ ആരും പ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കണ്ണൂർ അയ്യൻകുന്നിൽ കാട്ടാനശല്യം തടയുന്നതിനായി സ്ഥാപിക്കുന്ന സോളാർ തൂക്കുവേലിയുടെ നിർമ്മാണം ഈ മാസം 31 പൂർത്തിയാകും. തൊഴിലാളികളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ പ്രദേശവാസികളെ വേലി നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കാനും ഉന്നതതല അവലോകന യോഗം തീരുമാനിച്ചു. തൃശൂർ വാണിയമ്പാറയിൽ 25 ഗ്രാം MDMA രണ്ടുപേരെ എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം പിടികൂടി. കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന മയക്കുമരുന്നാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനം കാത്ത് കേരളം. തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമബംഗാൾ, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണൽ നാളെ. QR അധിഷ്ഠിത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ എന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ രതൻ യുഖേൽക്കർ. ആധാർ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം. രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അഗ്നിസുരക്ഷാ വാരാചരണം നാളെ മുതൽ. പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം നാളെ രാവിലെ 6:45.
1: സമയം 8:44:50. ഇനി 8:45 സമാചാര സന്ധ്യ തുറന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹിയിലെ.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा. मुख्य समाचार. पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी. सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था. भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया. उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है. पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है. मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया. और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया. दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है. और अब समाचार विस्तार से. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
2: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
6: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
7: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
8: जनादेश 2026।
9: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
8: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
9: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए
8: जनादेश 2026।
2: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
10: IIT मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्सी आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक एपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आपने सुना राग दरबारी। नीरज मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री में सितार वादन। विलंबित मसीद खानी गत तीन ताल में, मध्य लय एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग दरबारी। नीरज मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग बागेश्री। विलंबित मसीद खानी गत इज इन तीन ताल, मध्य लय is in ek taal and drut gat is set to teen taal.

0: राग बागेश्री के पश्चात नीरज मिश्र आज अपने कार्यक्रम का समापन सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग बागेश्री, नीरज मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र भैरवी।

0: आप सुन रहे थे सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन। कलाकार थे नीरज मिश्र। आज के रविवासरीय संगीत सभा में आपके साथ तबले पर संगति की देव नारायण मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र भैरवी प्लेड ऑन सितार बाय नीरज मिश्रा इन टू नाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Accompanying him on tabla was Dev Narayan Mishra. Recorded earlier at Akashvani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashvani.

0: जी
1: जब आप मंत्रालय का जो तैयारी के बारे में जैसे पूछ रहे हैं, ये लगभग अभी 1 साल पहले ये शुरू हो गई थी।
0: जी
1: और ये जनगणना जो होती है ये एक सेंसस एक्ट के तहत होती है, ये 1948। तो पहले हमारा जो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, वो पहले अपना इंटेंशन पहले वो दर्ज करते हैं गेजेट में। तो ये आई थी आपके जून महीने में आई थी, 2025 जून महीने में आई थी।
0: जी
1: उसके बाद हर राज्य और केंद्र शासित जो अंचल है वो भी अपने मतलब गेजेट में उसको फिर से रीनोटिफाई करते हैं कि हमारे भी स्टेट में, यूनियन टेरिटोरी में भी सेंसस करानी है।
0: जी
1: तो इस तरीके का एनसीटी और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इसको रीनोटिफाई किया था जुलाई में, जुलाई 2025 साल में। तो 2025 जुलाई महीने से लेकर आज तक हर दिन हम तैयारी में जुड़े हैं और अभी
0: जी
1: सेंसस भी ऐसे स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि मतलब बिना प्री प्लान करते हुए ये होती है सेंसस
0: जी
1: जैसे काम में, कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। और लगभग लगभग इसमें अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 50-55 हजार से भी ज्यादा लोग इसमें जुड़े हैं अभी काम में।
0: जी
1: जी
0: तो अब मैं अजय जी ये आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं जनगणना की, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे डिटेल इस समय हम जो हैं वो ले रहे हैं, लोगों के डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ऐसे में, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपनी ओर से भी जो जनता है वो उसमें सहयोग करेगी, शुरुआत करेगी, तो संख्या बल जो है दुनिया में वो हमारी एक ताकत है, लेकिन जब जनगणना की बात आती है तो यही काम बहुत बड़ी चुनौती भी बन जाता है।
1: जी
0: तो ऐसे में ये बताएं कि आपने किस तरह का जो पूरा एक तंत्र है वो खड़ा किया है, किन लोगों को शामिल किया है इसमें, और वो कितने रिलायबल हैं, हम कितना भरोसा करते हैं उन लोगों पर जो घरों में आएंगे और हमारा डेटा इकट्ठा करेंगे।
2: जी इसमें क्या होता है कि जो घर में जाते हैं, हर घर में विजिट करते हैं, उनको हम इनोमिनेटर कहते हैं।
0: जी
2: उसमें हमने क्या किया है कि दिल्ली को करीब हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है और हर ब्लॉक में करीब 200 के आसपास घर हैं।
0: जी
2: तो एक ब्लॉक को एक इनोमिनेटर का काम दे दिया जाता है और इस तरीके से 6 इनोमिनेटर के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है। तो करीब हम लोगों ने 46,000 इनोमिनेटर लगाए हैं, तो करीब 8-9 हजार सुपरवाइजर लगाए हैं।
0: जी
2: फिर उनके ऊपर होते हैं चार्ज ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर के ऊपर होते हैं डीएम, डीएम, एडीएम और एसडीएम अपने अपने एरिया के हिसाब से। तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट का जो है इंचार्ज सेंसस का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। जो इनोमिनेटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और बाकी के दूसरे डिपार्टमेंट्स के जहां पर हैं। सिमिलरली जो सुपरवाइजर हैं वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर लोग हैं। हर इनोमिनेटर के पास एक अपना आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, एक उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, तो आप देख सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और जिस डिपार्टमेंट का होगा उस डिपार्टमेंट का भी उसके पास कार्ड होगा। कोई आपको परेशानी है तो आप अपने एरिया के जो एसडीएम है या डीएम है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने एक एलोबोरेट वो कार्यक्रम चलाया है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी आरडब्ल्यूएच के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पब्लिसिटी भी हमारी हो रही है, तो ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप अपना संतुष्टि कर लें, कोई आता है आपको विजिट करने आता है तो उसका आई कार्ड देखें, वो देखें। और दूसरी बात ये कि जो हमारी एमसीडी एरिया में जनगणना है पहले फेज की, वो हमारी 16 मई से शुरू हो रही है।
0: जी
2: 16 मई से लेके 14 जून तक, तो उस समय लोग आएंगे वहां पर।
0: जी, जी। यानी एक स्पेसिफिक टाइम है और जो लोग आएंगे उनके पास अपना
2: आई कार्ड
0: भी होगा और उस तरह के दस्तावेज होंगे कि उनसे हम पूछ सकते हैं। और ये ज्यादातर उस तरह के लोग हैं जो पहले ही सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं,
2: सरकारी कर्मचारी हैं,
0: तो उन पर भरोसा आसानी से किया जा सकता है। आम लोग जो डेटा देंगे वो पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा,
2: वो पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा।
0: जी
2: वो जो आपने डेटा दिया है वो इनोमिनेटर अगर उसको किसी को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है।
0: जी तो जितेंद्र जी मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे जो डेटा दिया गया क्या उसके सत्यापन के लिए भी कुछ और हमें कागजात देने होंगे? अगर एक व्यक्ति दो घरों में रह रहा है, वो अलग अलग जोन में वो घर पड़ते हैं, तो क्या सत्यापन के लिए भी कुछ देना होगा? और जैसे छात्र हैं, किराए पर रह रहे हैं, तो उनका परिवार कहीं और है, वो कहीं और है, ऐसी परिस्थितियों में क्या करना होगा?
1: देखिए हमारे जनगणना में हम एक चीज को हम फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं डिफेक्टो मेथड, मतलब जो जहाँ पे है नॉर्मली जो जहाँ पे रह रहे हैं हम वहाँ पे उनको गिनेंगे।
0: जी
1: तो जैसे आप अभी दो ग्रुप ऑफ पीपल का नाम लिए, एक तो जो रेंट में रहने वाले लोग और जो एक स्टूडेंट्स, और जिसका नंबर शायद बहुत ही ज्यादा है दिल्ली जैसे जगह में। अगर वो लोग नॉर्मली यहाँ पे रहते हैं और सेंसस के दौरान अगर उनको यहीं पे अगर पाया जाता है, जो भी एनिमल उनके घर में जाएंगे तो उनकी गिनती यहीं होनी चाहिए।
0: जी
1: और इसमें आपने और जो दूसरे जो सवाल पूछे कि सत्यापन कैसे किया जाएगा, तो सेंसस में हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते हैं
0: जी।
1: कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। रेस्पोंडेंट जैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, हम उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं और ये टोटली ये रेस्पोंडेंट बेस्ड आंसर होती है ये। तो इसमें उसको वेरिफिकेशन करने की कोई स्कोप नहीं है
0: जी।
1: तो जो भी एन्यूमरेटर जाएंगे वो केवल हमारे जो शेड्यूल में जो दिया हुआ क्वेश्चन को पूछेंगे और रेस्पोंडेंट जो आंसर देगा उसको वो रिकॉर्ड करेंगे
0: जी।
1: और ज्यादातर ये हमारे दिल्ली जैसे जगह पे के हम लोग देखे हैं पिछले सेंसस में भी कि जो रेंट में रहते हैं या तो जो स्टूडेंट्स जो बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनका यहाँ पे गिनती सही नंबर पे होती नहीं है
0: जी।
1: और इस बार हम काफी इस चीज के ऊपर जोर भी दे रहे हैं, जो पब्लिसिटी हमारे जो होती है उसमें भी हम बार बार सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बताते हैं कि अपने लोकल लेवल पे भी ये जागरूकता लाए कि जो रेंट में रहने वाले लोगों को भी यहाँ पे गिना जाए
0: जी।
1: और इसके पीछे का खास एक मकसद भी है, अगर उनके नंबर हम दिल्ली में अगर नहीं गिनेंगे तो बहुत बड़ी एक प्रोपोर्शन लोगों को हम छोड़ देंगे
0: जी।
1: और आप अगर देखेंगे तो दिल्ली के जो भी रिसोर्स है, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आपके बेसिक एमिनिटीज जिसमें ड्रिंकिंग वाटर हो, तो ये तो दिल्ली के ही यूज कर रहे हैं। तो अनलेस अनटिल उनका नंबर हमें पता चले, बेटर प्लानिंग भी नहीं बना सकते हम दिल्ली के लिए
0: जी।
1: तो ये इससे आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये जनरल पब्लिक को ये कहना चाहेंगे कि अगर उनके घरों में कोई पीजी में रह रहा हो या तो कोई रेंट में रह रहा हो तो उनको भी जरूर गिनती कराए जनगणना में।
0: और दिल्ली हम सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, भारत वर्ष में ही यानी हर स्थान पर यही प्रक्रिया
1: जी, जी जी ये दिल्ली का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग दिल्ली को देखते हैं, बट ये जो मैंने जो बताया अभी ये पूरे भारत के लिए लागू है
0: जी। अजय जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि बाद में नीतियां भी बनाई जाएंगी उनका लाभ मिलेगा आम लोगों को, लेकिन कई लोगों के मन में ऐसा भी भाव होगा कि अगर हम न बताना चाहें अपने बारे में, हम जनगणना में भाग न लेना चाहें, तो क्या हम पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या ये जरूरी है भाग लेना?
2: जरूरी है। सेंसस जो कानून है 1948 का, वो हर नागरिक के ऊपर एक जिम्मेवारी देता है कि वो सही जानकारी दे
0: जी,
2: जो उनसे मांगी जाएगी, जो पूछी जाए
0: जी। और ऐसे में क्या डबल काउंटिंग भी हो जाती है, जैसा कि अभी बात की जितेंद्र जी ने, कि कोई किसी का परिवार मान लिया उत्तर प्रदेश में कहीं रह रहा है छोटे से गांव में, और उनका बच्चा दिल्ली में आकर पढ़ रहा है या मुंबई में है, तो मुंबई में वो रेंट पर रहता है, वहां उसकी गिनती हो गई है, ऐसे में परिवार में जो माता पिता हैं वो भी अगर उसके बारे में बताएं, तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें पता चल पाए कि दो जगह एक ही व्यक्ति का नाम गिना जा चुका है?
2: उसको हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि 100%, लेकिन जो नियम ये है कि जो जहां पर नॉर्मली रहता है वो वहीं पे काउंट होगा
0: जी।
2: अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है तो वो यहीं पे काउंट होगा
0: जी, जो जहाँ रह रहा है उसकी
2: नॉर्मली
0: वहीं
2: पे
0: होनी चाहिए।
2: सामान्यतः जहाँ पे रह रहा है वहीं पे काउंट होगा, वो वहीं पे उसे अपने आप को काउंट कराना चाहिए
0: जी। जो मकान मालिक होते हैं उनके मन में अपनी संपत्ति को लेकर अक्सर एक डर रहता है, इसीलिए जो रेंट एग्रीमेंट भी होते हैं कई बार वो बहुत डर के साथ बनाते हैं या कुछ क्लॉज उसमें रखते हैं। ऐसे में अगर जनगणना में किराएदारों को उसी संपत्ति पर गिना जाएगा, उनका एड्रेस वही जनगणना में शामिल होगा, तो क्या आगे चलकर मकान मालिक को इससे कोई खतरा हो सकता है? उन्हें डरना चाहिए क्या इस बात से?
2: नहीं, जो आपने जनगणना में इन्फॉर्मेशन दी है
0: जी,
2: वो ना तो कोर्ट उसको मंगाती है ना आरटीआई में वो प्रोवाइड की जाती है
0: जी। यानी जो कहा जा रहा है कि अगर आपके यहाँ कोई किराएदार है, अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट रह रहा है और पीजी के रूप में रह रहा है, तो उनकी भी सही जानकारी देनी चाहिए, और आगे चलकर वो आपकी संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकते,
2: उसके आधार पर नहीं कर सकते,
0: उसके आधार पर नहीं कर सकते हैं जी। तो अजय जी आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जनगणना का प्रोसेस है आपने बताया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो हमने सुना उसमें भी उन्होंने कहा कि शुरुआत जो है वो जनता को अपनी ओर से करनी है, और दो चरण इसके आमतौर पर होंगे, तो वो पहला चरण क्या है, हम किस तरह से ऑनलाइन कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे अपनी जानकारी देंगे?
2: हाँ, इस बार जिसे सेल्फ इन्यूमरेशन कहते हैं, स्वगणना उसको रखा गया है। तो इसमें जैसे हम MCD एरिया का ले लें, तो MCD एरिया में 1 मई से लेकर 15 मई तक आप स्वगणना कर सकते हैं। स्वगणना व सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब ये है कि आप उस पोर्टल पे चले जाएं
0: जी,
2: और बहुत आसान है, अपनी डिटेल खुद भर दें उसमें, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं भरने में
0: जी।
2: और जैसे ही आपने भर के उसको आपने सबमिट किया पोर्टल पे, तो आपका एक नंबर जनरेट हो जाता है
0: जी,
2: जिसे सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी बोलते हैं। तो इनोमरेटर जब आपके यहाँ पे आएगा तो आप उसे अपनी एस

0: आईडी दे देंगे तो फिर वो नहीं भरेगा डिटेल, जो आपकी डिटेल है उसके पास आ जाएगी
1: जी।
0: और वो उसके हिसाब से आगे, तो इससे काम काफी त्वरित हो जाएगा। बाहर के कई पाश्चात्य देशों में स्वगणना का है, तो हमारे यहाँ पर ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, डिजिटल सेंसस का एक एक कंपोनेंट है
1: जी।
0: और दूसरा पक्ष क्या होता है, जब हमारा 1 से 15 तक स्वगणना है, सेल्फ इनोमरेशन है, फिर 16 मई से लेकर 14 जून तक एमसीडी वाले एरिया में
1: जी
0: हमारा फील्ड ऑपरेशन, मतलब इनोमरेटर घर घर जाएंगे, और जिन्होंने स्वगणना नहीं कर पाते हैं तो वो उनका डिटेल इकट्ठी करेंगे, और स्वगणना वालों की, सेल्फ इनोमरेशन वालों की सिर्फ SC ID ले लेंगे, नंबर ले लेंगे और
1: जी।
0: इस तरीके
1: तो प्रक्रिया जल्दी भी हो जाएगी, समय
0: जल्दी
1: कम लगेगा,
0: बहुत जल्दी हो जाएगी
1: जी। ऐसे में मुझे ये जानना है कि जब जनगणना हो रही है और घर पर अधिकारी आए हैं, उन्हें डिटेल देनी है, ऐसे में अगर कुछ समय के लिए कोई विदेशी नागरिक किसी परिवार में रुके हुए हैं या कोई ट्रैवलर हैं वो रुके हैं किसी वजह से, आजकल BNB सिस्टम भी है तो घरों में पेइंग गेस्ट के रूप में कुछ समय के लिए रुकते हैं, क्या उनकी डिटेल भी देनी जरूरी है?
0: देखिए, व्यक्ति की जो डिटेल है वो तो हमारा जो नेक्स्ट फेज होगा पॉपुलेशन इनुमरेशन वाला, उसमें ली जाती है। अभी तो बेसिकली घरों का सूचीकरण हो रहा है
1: जी,
0: एक तरीके से हम जो हाउसेज हैं उनकी डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, बस ये जरूर पता कर रहे हैं कि भाई कितने वो, मतलब एक ही आदमी बताते हैं जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है
1: जी,
0: कि भाई हमारे इसमें 4 लोग हैं या 5 लोग हैं
1: जी। ऐसे में जिस व्यक्ति के नाम वो मकान है, अगर उनका देहांत हो चुका है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो किसका नाम वहाँ लिखवाया जाएगा मुखिया के तौर पर, परिवार के मुखिया के तौर पर?
0: हेड ऑफ द हाउस होल्ड तो कोई भी, जरूरी नहीं है कि वो घर का मालिक ही हो, जो भी वहाँ पर, बेसिकली वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनकी जानकारी दे रहा है घर के बारे में, जिसको घर के बारे में मालूम हो,
1: तो उस एड्रेस पर एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को और वो परिवार की
0: जानकारी दे रहा है
1: जी। तो इस तरह की कंफ्यूजन नहीं रखने हैं कि किसके नाम मकान है,
0: नहीं, और नहीं, वो व्यक्ति रहे वो नहीं
1: जी।
0: बात यह है कि कोई परिवार रह रहा है घर में, इस मान लीजिए इधर कोई रह रहा है
1: जी,
0: तो इसको इस घर में कितने लोग रह रहे हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर की एट्रीब्यूट्स हैं वो
1: जी वो बताने हैं। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी सर ने बताया कि एक घर का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो रहा है
0: जी,
1: तो जो कच्ची कॉलोनियां होती हैं, झुग्गी बस्ती
0: जी,
1: जो है
0: जी,
1: जैसे एक परिवार वहां रह रहा है, वो एड्रेस कहीं कागजों पर पक्का नहीं है
0: जी,
1: तो ऐसे में वो क्या करें
2: जी? देखिए, जनगणना में हम कभी ये नहीं देखने के लिए कोशिश करते हैं कि ये घर ऑथोराइज कॉलोनी में है कि अनऑथोराइज कॉलोनी में है, रहने वाले आदमी के नाम पे ये कागजात बना है कि नहीं बना, ये हमें नहीं देखना है
1: जी।
2: हमारा जो मकसद है कि पूरे अगर कोई एरिया, जैसे आप, मैं दिल्ली का ही फिर से एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, तो जैसे दिल्ली में जैसे सर बता रहे थे कि 46,000 के आसपास हम लोगों ने ब्लॉक्स बनाए हैं, तो इन ब्लॉक्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, कहने का मतलब है जितने भी स्ट्रक्चर मकान तो ये भी होंगे, उनको हम पहले फर्स्ट फेज में उसका हम कवर करेंगे
1: जी,
2: जिसको हम कहते हैं मकान सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस, उसमें जाके पूरी डिटेल लिया जाएगा। तो इसमें कहीं पर भी हम ये नहीं पूछ रहे हैं जो स्ट्रक्चर में जो रहने वाले पर्सन जो है एक्चुअल उसका वो ओनर है कि नहीं है
1: जी,
2: ये हम कभी नहीं पूछते हैं। और हम सेंसस में हम सभी जगह, चाहे वो ऑथराइज हो, चाहे वो स्लम हो, चाहे वो झुग्गी जो आप बता रहे थे, हम सभी जगह हम उसको जाके सेंसस कराएंगे
1: जी।
2: हाँ, और इसमें कोई लीगलिटी देखने का कहीं पर भी स्कोप नहीं है। अगर हमारे जो शेड्यूल भी अगर आप देखेंगे, जिसमें हम 33 क्वेश्चन पूछने वाले हैं अभी
1: जी,
2: पहला चरण में, तो यहाँ पे कहीं पे लीगल डॉक्यूमेंट्स का पूछने का कहीं पर भी प्रावधान ही नहीं है
1: जी। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी वजह से गलत सूचना दे दी गई है परिवार के किसी सदस्य के द्वारा और वो बाद में सही करवानी है, तो क्या ये संभव है, इसका क्या प्रोसेस होगा?
0: क्योंकि इस बार डिजिटल है, ऐप के थ्रू डिटेल इकट्ठी की जाती है
1: जी,
0: तो अगर ऐप में मतलब जो इनुमरेटर है उसने सबमिट कर दिया तो फिर चेंज नहीं होगी वो,
1: फिर उसमें सुधार नहीं हो सकता,
0: उसमें सुधार नहीं होगा
1: जी। जैसे गांव देहात में होता है कि माता पिता अकेले रह रहे हैं, वृद्ध हैं, उन्हें पता नहीं है कि बच्चों ने जहां रह रहे हैं वहां अपनी जानकारी दे दी है, और वो भी बता देते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो परिवार का सदस्य तो है ही, तो वो डबल एक तरह से हो गया प्रोसेस, तो उसमें क्या किया जा सकता
0: है? देखिए, डुप्लीकेशन हो सकता है, जो यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा इस फेज में हम जो कर रहे हैं वो हाउसिंग सेंसस कर रहे हैं
1: जी,
0: तो उसमें हम मोटा मोटी यही मांग रहे हैं कि जो आदमी उस घर में नॉर्मली रहता है, तो हो सकता है कि लोग, कुछ लोग इस तरीके का
1: जी। और
0: वैसे तो इनुमरेटर उनको जाके समझाता है, भाई इनोमेटर जाके समझाता है कि भाई जो बाहर रह रहे हैं वो मतलब उस तरीके से उनको जानकारी देता
1: जी,
0: है।
1: उस समय भी उनको पहले समझाया जाएगा तब उनसे डिटेल ली जाएगी जी। और जो घर लंबे समय तक बंद मिले

0: उनके बिहाफ पर कौन जानकारी देगा?
1: नहीं, वो तो लॉक लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं।
0: जी ठीक है, तो जितेंद्र जी अब
2: इसमें मैं थोड़ा सा सर ने तो बता दिए, बट जो हमारे जो एन्यूमरेटर या तो उनके ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनका बहुत ही एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग होती है
0: जी,
2: 3 दिन की। और इस ट्रेनिंग के दौरान हम उनको अच्छे से समझाते हैं कि हमारे सेंसस के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग कौन हो सकते हैं, जैसे आपका जो सवाल था
0: जी,
2: कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स उसके होम स्टेट में है, तो वो एन्यूमरेटर जब उनके घर विजिट करेंगे तो वो जनरली कुछ प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे
0: जी।
2: जैसे सपोज ओल्ड पेरेंट्स है तो उनको ये पूछेंगे कि आपके बच्चे क्या आपके साथ रह रहे हैं, कि वो बाहर रह रहे हैं, तो इस तरीके एकदम से जाके ये सवाल नहीं करेंगे कि आपके इस घर में कितने लोग रहते हैं, थोड़ी सी प्रोबिंग टेक्निक्स को यूज करके वो अपने क्वेश्चन करेंगे
0: जी,
2: ताकि हमारा जो सही जो सवाल है उनसे हम निकाल सकते हैं या तो पूछ सकते हैं, ले सकते हैं उनसे
0: जी।
2: और लॉक्ड वाला सर ने बता दिए, बट हमारे जो पहला चरण का जो समय सीमा जो है वो 30 दिन की होती है। तो ये 30 दिन के अंदर अगर एन्यूमरेटर फर्स्ट या सेकेंड डे में जाके देखा कि घर लॉक्ड है, तो उसका कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सेकेंड या थर्ड टाइम भी जाके उसको चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले। कई बार जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो निकल जाते हैं अपने काम में, तो मैं भी अगले दिन वो शाम को जाए
0: जी।
2: और जैसे ऐसे भी परिवार है जो मंडे से लेके फ्राइडे तक बहुत बिजी होते हैं, तो उनको रिविजिट करने के लिए वो एक बार सैटरडे या तो संडे को चले जाए, तो एक बार रिकन्फर्म करके उसको लॉक या तो वैकेंट लिखे, ताकि हमारे यहाँ पे जो लोग जो रहने वाले एक्चुअल जो वो ना छूटे। मेन पर्पज हमारा वो है, इसीलिए 30 दिन का वो दिया गया है विंडो पीरियड। और इसी 30 डेज के बाद भी अगर उनको रिकन्फर्मेशन के बाद भी पता चलती है कि घर वैकेंट है, लॉक्ड है, तो उनको वही मार्क करनी है, लॉक या वैकेंट
0: जी। यानी पूरा प्रयास किया जाएगा कि सही जानकारी दर्ज हो और सही समय पर भी हो, जो सुविधाजनक समय है।
1: इसमें बेसिकली जो जितेंद्र ने बोला कि जो लॉक्ड हाउस है उसको एक दो बार
0: जी प्रयास किया जाएगा,
1: एक दो बार फिर से विजिट किया जाता है
0: जी। यहाँ अजय जी आपसे ही जानना चाहूंगी, जैसा अभी बताया जितेंद्र जी ने कि प्रशिक्षण दिया गया है और बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं, तो आपने भी बातचीत के माध्यम से बताया कि कई चीजें नई हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो पहले जनगणना हुई है भारत में और जो इस बार हो रही है, तकनीकी तौर पर, व्यवहारिक तौर पर क्या अंतर है प्रक्रिया में?
1: तकनीकी तौर पर यह है कि इसमें हम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके 4 डिजिटल टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो है जिसे हम कहते हैं कि CMMS पोर्टल
0: जी,
1: जहां पर पूरा सेंसस का जो मैनेजमेंट है तो उसको हम इसके थ्रू, इसमें जितने भी जैसे पूरी कंट्री में करीब 34 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनको इंगेज किया जा रहा है सेंसस प्रोसेस के लिए, तो उन सबका रजिस्ट्रेशन हो गया
0: जी।
1: फिर उनको अलॉटमेंट है कहाँ पे ड्यूटी करनी है, पूरा उसका मैनेजमेंट इसके माध्यम से हो रहा है। दूसरा है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, तो एक अगेन ये पोर्टल है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी जो होती है
0: जी,
1: गांव की, म्यूनिसिपल वार्ड की, सब डिस्ट्रिक्ट की, उसके ऊपर हम उसको जियो रेफरेंस्ड ब्लॉक्स काट रहे हैं। मतलब एक ब्लॉक इनोमरेटर को दिया जाता है ना, तो जैसे दिल्ली में मैंने आपको बताया कि दिल्ली को हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है
0: जी।
1: और ये 46,000 ब्लॉक जियो रेफरेंस्ड है। तीसरा जो हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्फ इनोमरेशन पोर्टल, जिसमें व्यक्ति अपना खुद का सेल्फ इनोमरेशन कर सकता है। और जो चौथा है, पहले बड़े बड़े फॉर्म लेके जाते थे हमारे एनुमरेटर जिसमें वो डिटेल लिखते थे, अब सिर्फ मोबाइल फोन पे ऐप के माध्यम से वो डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, वो उससे बहुत तेजी से डेटा इकट्ठा हो रहा है
0: जी।
1: पहले 20-25 मिनट लगता था उसको भरने में फॉर्म को, अब हार्डली 10 मिनट लगता है
0: जी, 15 मिनट। और व्यवहारिक तौर पर आपने बताया कि कुछ प्रश्न जो हैं वो और जोड़े गए हैं, लेकिन वो भी इसलिए कि बाद में बेहतर सुविधाएं दी जा सके।
1: हाँ, क्वेश्चन ज्यादा नहीं जोड़े गए 2011 के, उससे
0: जी
1: कुछ ही अमेंडमेंट हुए हैं। बहुत एक्चुअली क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट से उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, एक हाई लेवल हाई पावर्ड कमेटी होती है
0: जी,
1: वो डिसाइड करती है कि सेंसस में कौन से सवाल, कि कोई डिपार्टमेंट कहता था मुझे इसका चाहिए, डिटेल चाहिए
0: जी। जैसे कई बार आम लोग जो हैं वो इस तरह की शिकायतें भी करते हैं कि इस एरिया में हमारे इतने लोग हैं लेकिन सीधी बस सुविधा कोई नहीं है, या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो समस्या है, या बिजली पानी की दिक्कत है, ये होता है। तो हम एक विभाग को जानकारी दे रहे हैं लेकिन आगे ये कई विभागों तक पहुँचती है और कई बेहतर सुविधाएं हमें मिलती हैं, उसमें चिकित्सा सुविधा भी हुई, कई तरह के सरकारी डिस्पेंसरीज, ये सब। तो और इसीलिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी है
2: जी।
0: अब जितेंद्र जी ये बताएं कि जब हम अपनी जानकारी देते हैं सेंसर

0: हम बता रहे थे, सर भी बता रहे थे कि सेंसस दो फेज में हो रही है। पहला फेज में हम हाउस लिस्टिंग करते हैं और हाउस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी कलेक्ट करते हैं, और सेकंड में पॉपुलेशन एनुमरेशन करेंगे, मतलब उतने वार्ड में, उतने एरिया का वार्ड का जो भी होगा उसमें कितने लोग रहते हैं वो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं।
1: जी
0: सिमिलरली विलेज का भी, तो इतने छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब ये गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा कि इतने घरों में, मे बी इतने नंबर ऑफ घरों में अभी LPG कनेक्शन नहीं है, कि
1: जी
0: लैट्रिन फैसिलिटी नहीं है, कि इनके अभी भी जो मकान जो है वो कच्चा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे स्कीम के लिए
1: जी
0: शायद वो बेनिफिशियरी बन जाएंगे। और या तो आप, अगर आप देखेंगे उज्ज्वला योजना जो चल रही है अभी
1: जी
0: सरकार के द्वारा, तो उसमें जिस जिस घरों में अभी LPG कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ के वो सब घर अभी यहाँ के लिए बेनिफिशियरी बन जाएंगे।
1: जी
0: तो ये एक डायरेक्टली कनेक्शन है सेंसस का डेटा एंड अवर गवर्नमेंट के पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो
1: जी
0: यहाँ पे आप एकदम डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे आर्थिक, जैसे आप बता रहे थे, वो ना देख के जितने लोग यहाँ पे सही तरीके से अपने पार्टिसिपेशन करेंगे और आंसर्स देंगे,
1: जी
0: उतने अच्छे पॉलिसी एंड प्रोग्राम बन सकती है देश के लिए, वो भी छोटे से छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे।
1: जी तो
2: जैसे आपको एक उदाहरण दें कि हम फेज वन में डिटेल
1: जी
2: इकट्ठी करते हैं कि किस तरीके का ईंधन इस्तेमाल होता है घर में, तो फिर हमारे पास पूरा डेटा है कि भारत के कौन से हिस्से में
1: जी
2: लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, कितने घरों में LPG है, क्या है, हमारे पास डेटा है। तो उसके
1: जी
2: हिसाब से हम एक प्लान कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जरूरत है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, जैसे ड्रिंकिंग वाटर की है जी, तो हम पता करते हैं कि साहब कितने घरों में नल है, तो हमारे पास हमें ये मालूम पड़ जाता है कि साहब इस डिस्ट्रिक्ट का ये जो हिस्सा है इन इन ब्लॉक्स में, वहां पर वो कुएं से पानी लाते हैं, किसी पोखर से पानी लाते हैं, तो फिर हम एक इंटरवेंशन स्कीम बना सकते हैं कि साहब यहाँ पे हमें लगानी है,
1: जी
2: यहाँ पे टैप वाटर पहुंचानी है। तो जैसे सीवर फैसिलिटी है उसकी भी डिटेल हम इकट्ठी करते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इस कॉलोनी में सीवर फैसिलिटी नहीं है, तो ये डेटा इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे बैंकिंग का हो गया जी,
1: जी
2: तो बैंकिंग का हमें मालूम पड़ गया कि साहब इस शहर में, इस शहर के पर्टिकुलर पार्ट में बैंकिंग बहुत कम लोगों के अकाउंट खुले हैं, तो उस
1: जी
2: हिसाब से स्कीम बन सकती है कि कैसे उसको प्रमोट किया जाए।
1: यानी ये जो डेटा है बहुत ही विस्तारित तरीके से सोचा जाता है इस पर, और किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया जाता
2: नहीं।
1: है, और जो सोचा जाता है वो पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचा जाता है कि जिस चीज का अभाव है उसे हम दूर कर पाए। जी यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अजय जी, आपने बातचीत में कहा कि टीचर्स जो हैं वो जाएंगे डेटा कलेक्शन के लिए।
2: आपसे एक चीज शेयर करूंगा, उनका काम बहुत अच्छा रहा है
1: जी,
2: सभी जो हमारे शिक्षक टीचिंग फ्रेटर्निटी से हैं
1: जी,
2: बहुत अच्छा काम हमारे पिछले सेंससेस में हुआ है। और चूंकि एक तो उन्हें अपने एरिया का आइडिया भी होता है
1: जी,
2: तो वो भी फैसिलिटेट होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे इस बार हम वैकेशन के टाइम पे कर रहे हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी भी है
1: जी,
2: और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने
1: जी।
2: बाकी डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि टीचिंग फ्रेटर्निटी से
1: जी। तो जो भी शिक्षक सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने एरिया में आप सम्मानित व्यक्ति हैं और अपने एरिया को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। हमने अभी तक जाना कि जनगणना जो है ये क्यों जरूरी है, हमें अपनी ओर से क्या सहयोग करना है, और कैसे सरकार जो है एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया इसके लिए अपना रही है, बहुत डिटेल में तैयारी की गई है ताकि हमारी सही जानकारी सरकार तक पहुंचे और बदले में हमें सुविधाएं मिले और साथ ही ऐसे फैसले लिए जा सके जो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैं जितेंद्र जी आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जो हमें फर्स्ट फेज में अपनी जानकारी देनी है उसके लिए जो ऐप है या वेबसाइट है, कैसे करना है उसके बारे में आप हमें बताएं।
0: जी, ये पहला सेंसस है जहाँ पे सेल्फ एनुमरेशन इंट्रोड्यूस हुआ है
1: जी,
0: इससे पहले कभी ऐसे हुआ नहीं था। और ये जो जानकारी देने का जो URL जो पोर्टल है वो sec.census.gov.in, इसमें आप जाके
1: एक बार दोहरा दीजिए
0: जी, SE फॉर सेल्फ एनुमरेशन .census.gov.in
1: जी,
0: इस पोर्टल में जाके आप अपने मोबाइल नंबर, घर का कोई भी सदस्य का मोबाइल नंबर से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं
1: जी।
0: उसके बाद अपने पसंदीदा भाषा भी चुन सकते हैं, और उसके बाद आप अपने जो जानकारी जो है
1: जी।
0: जो हमारे पहला चरण में जितने भी 30 थे जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप जाके अपने पसंदीदा भाषा में पढ़

0: के उसको आप अपना जवाब दे सकते हो
1: जी।
0: और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, एक बार आपने भाषा को चयन करने के बाद अब आगे जाके उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर हिंदी अगर चुना है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसके पूरे जो आने वाले जो सवाल जो रहेंगे वो हिंदी में ही होंगे। और अगर किसी ने अंग्रेज अगर या तो इंग्लिश अगर उसने चुना है, तो आने वाले सभी सवाल उसका इंग्लिश में ही मिलेगा
1: जी।
0: तो जब भी अपना भाषा को वो चयन करे वो थोड़ा ध्यान से करे
1: जी,
0: क्योंकि आगे जाके वो चेंज नहीं कर सकते हैं वो। और ये सेल्फ एनुमरेशन का जो अभी टाइमलाइन जो है हमारे MCD एरियाज के लिए, 1 मई से लेके 15 मई
1: जी,
0: 15 दिन के अंदर आप अपना जानकारी अगर चाहेंगे तो इसी पोर्टल में जाके दे सकते हैं। और जैसे सर ने भी बताए थे कि एक बार आपने जानकारी आप इस पोर्टल में जाके देने के बाद 11 डिजिट का एक ऐसी आईडी जनरेट होगी, और इस आईडी को आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा। जब आपके घरों में एन्यूमरेटर विजिट करेंगे तो तब उनको आप ये आईडी दीजिएगा, ताकि इस आईडी के द्वारा वो आपका दिया हुआ जानकारी को वो फेच कर सकते हैं HLO ऐप में
1: जी।
0: ये हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप जो है एक डिजिटल एक ऐप है जिसके द्वारा पूरे जानकारी इसी सेंसस में इकट्ठा होने वाला है।
1: HLO
0: ऐप हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप
1: जी। और क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी है अगर कोई समझना चाहे इस प्रक्रिया को?
0: जी, इस बार सेंसस में जो हेल्पलाइन नंबर जो रखा गया है वो है 1855। तो अगर कोई दिल्ली के रहने वाले कोई व्यक्ति या तो कोई भी सिटीजन अगर यहाँ पे से रहने वाले कोई भी पर्सन अगर इस नंबर पे फोन करेंगे सेंसस को लेके, अगर कोई उनके मन में कोई प्रश्न हो तो इस नंबर पे फोन करेंगे तो हमारे जो भी कंसर्न जो पर्सन है इस लाइन को जो हैंडल करते हैं वो उनको वो हेल्प करेंगे, वो सहायता करेंगे
1: जी।
0: जी,
1: उन्हें समझा भी सकते हैं कि कैसे एंटर करनी है डिटेल्स
0: जी।
1: और अजय जी, अब आपसे ये सवाल कि सच में जो लोग मुसाफिर हैं, ना घर है ना ठिकाना है, होमलेस लोग हैं जो जैसे बेगर्स भी हैं या कुछ उस तरह का काम करते हैं, फेरी वाले होते हैं कई लोग, या कोई उस तरह की स्थिति है, तो वो कैसे अपने आप को दर्ज करें, उन्हें क्या जानकारी देनी है?
2: जो होमलेस हैं तो होमलेस का जो उनका मकान सूचीकरण का तो नहीं होता है
1: जी,
2: जो दूसरा फेज होता है जिसको हम पॉपुलेशन एन्यूमरेशन कहते हैं, उस समय उनकी गणना होती है। तो उसमें एक दिन हमारा फिक्स होता है, अक्सर 28 फरवरी होता है, 28 फरवरी की रात को
1: जी।
2: तो हमारे जितने एन्यूमरेटर हैं पूरे जहां पर भी इन लोगों का हमारे पास, पहले हम लोग मैपिंग कर लेते हैं कि अधिकतर इन लोगों का यहाँ रहने का है, और फिर उनका वो डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं
1: जी।
2: इस तरीके से
1: मतलब फुटपाथों पे, वो जहां भी जिस
2: जहां पर भी वहीं पर
1: जी,
2: फुटपाथ पे जाते हैं हमारे लोग, पहले मैपिंग कर लेते हैं हम लोग
1: जी,
2: यहाँ फुटपाथ पे लोग रहते हैं वहाँ रहते हैं। तो फिर 28 तारीख की रात को शाम को वहाँ पर जाके सब लोग डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं होमलेस की।
1: तो अजय जी, आपसे बातचीत के माध्यम से और जितेंद्र जी ने जो बताया, हमने समझा कि सेंसस जो है वो कितनी जरूरी चीज है, और ये पूरी प्रक्रिया जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें हमारा योगदान यही है कि हम अपने बारे में सही जानकारी दें, और जो भी हमारे घर पर आ रहे हैं वो एक विश्वसनीय पात्र हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हम अपना डेटा दे सकते हैं, और ये डेटा पूरी तरह गोपनीय भी है, और हमसे कुछ ऐसी जानकारी नहीं पूछी जा रही है जिससे बाद में हमें कोई नुकसान हो सकता है। तो इतना भरोसा जो है वो रखना है जी। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब घरों में आएंगे, एक तरह का सर्वे ये हो रहा है, ऐसे में जो सवाल वो हमसे पूछेंगे, आम लोगों को जो जवाब देना है उन सवालों का, क्या पहले से वो पता कर सकते हैं कि कौन से सवाल हैं, और इसके अलावा कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो मना कर सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल, जो सेंसस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले से ही गैजेट में नोटिफाई होती है
1: जी।
0: तो जैसे अभी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए कुल 33 क्वेश्चन पूछा जाएगा
1: जी,
0: ये क्वेश्चन का सूची ऑलरेडी ये गैजेट में नोटिफाई हो चुकी है। और HLO स्टार्ट होने से पहले भी ये अपने न्यूज़पेपर में भी आप लोग देख सकते हो, कई बार न्यूज़पेपर में भी ये आती है ये
1: जी।
0: तो ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में भी होती है, और पब्लिक अगर जानना चाहेंगे तो गैजेट नोटिफाई जो किया गया क्वेश्चंस को भी वो अपने तरीके से जैसे इंटरनेट से भी वो लोग देख सकते हैं
1: जी।
0: और हर एक चीज पब्लिक में ही है, पब्लिक डोमेन में ही है, तो उनको भी सब कुछ पता रहता है शुरू से ही कि जो एनुमरेटर उनके घर में विजिट करेंगे तो वो कौन से सवाल पूछने वाले हैं। तो इसमें कहीं मिस यूज ऑफ उनका जो पावर आप या तो पोजिशन का, यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं उठता है
1: जी। तो सवाल पहले से हमें पता होता है और उनके सही जवाब देने हैं। घरों में जब हम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो दिव्यांगजन है उन्हें छोड़ दिया जाता है या न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको नहीं गिना जाता है, तो क्या इनका भी बताना इनके बारे में जरूरी है?
0: जी देखिए, सेंसस में चाहे वो कोई भी जेंडर का क्यों ना हो, चाहे कोई भी एज का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी दिव्यांग या तो और कोई क्यों ना हो, हम सभी को गिनेंगे
1: जी।
0: और जैसे बताया गया है कि ये नॉर्मली रिसाइडिंग चाहे कोई भी एज का हो, चाहे कोई भी जेंडर का हो, हम उनको गिनेंगे। और इंडिया में ये हमेशा ये देखा गया है जो एल्डरली होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं मे भी कुछ दिनों के वो है और या तो दिव्यांग, तो इनको हम जनरली छोड़ देते हैं। तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आपके घरों में एनिमेटर आए और आपको ये पूछे कि आपके घरों में नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर की संख्या क्या है
1: जी,
0: तो आप जरूर इन सबको इसमें इंक्लूड करें
1: जी।
0: क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सही संख्या जो दिव्यांग हो या तो एल्डरली हो अगर नहीं पता चलेगा तो उनके लिए जो जरूरत की जो योजनाएं जो है वो नहीं बन सकती है
1: जी।
0: क्योंकि वो एक स्पेशल नीड के कैटेगरी के लोग हैं और आप दूसरी भाषा में कैसे वो सबसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं सोसाइटी के
1: जी।
0: एल्डरली के लिए उनके जेरियाट्रिक केयर की जरूरत होती है, डिजेबल पीपल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि और कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है, हेल्थ केयर हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है। तो ये एकमात्र के जरिया है जिसके द्वारा हम अपने घरों में जो रहने वाले ऐसे कैटेगरी के लोगों को बताएं ताकि गवर्नमेंट उनके लिए भी सही योजनाएं प्रोग्राम बना सकती है
1: जी। जी एक आम धारणा रहती है जब जैसे मतदाता पहचान पत्र होता है तो जिन लड़कियों की शादी हो जाती है या जो लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं वो अपने मूल स्थान पर ही मतदान करना चाहते हैं तो मतदाता पहचान पत्र में एड्रेस चेंज नहीं करते, और जब कभी गिनती होती है तो मूल स्थान पर ही करवाते हैं। लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: अलग है।
1: आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर अपने आप को काउंट कर सकते हैं जी।
0: जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग में हमेशा जो टेम्पररी ऑप्शन लोगों को भी गिना जाएगा
1: जी।
0: ये जरूरी नहीं कि जब एनुमरेटर घरों में जाए जितने नॉर्मली रिसाइडिंग के लोग सबके सब अवेलेबल हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता सभी केसेस में
1: जी।
0: तो अगर कोई अगर टेम्पररी एब्सेंट है, चाहे वो काम के लिए बाहर गए हैं या तो पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं, कुछ दिनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ मैं, और या तो मैं भी रिश्तेदारों में चले गए हैं, ऐसे लोगों को भी जो टेम्पररी एब्सेंट है बट वो दे आर द नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर ऑफ दैट हाउस होल्ड, तो उनको भी आप इसमें गिनेंगे
1: उनको।
0: और कोई अगर गेस्ट है जो आपके घरों में मे भी कुछ दिन के लिए आए हैं
1: जी,
0: और मे भी कुछ दिनों के बाद तो फिर से वापस चले जाएंगे अपने जहाँ से आए हैं, तो उनको आप एक्सक्लूड करें। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम दिल्ली में ये जानना चाह रहे हैं कि सेंसस के दौरान, और या तो आप कह सकते हैं जिस तारीख को ये डेटा पब्लिश होगी जो कि 1 मार्च 2027
1: जी,
0: तो उस तारीख में दिल्ली में कितने लोग नॉर्मली रह रहे हैं, ताकि इस नंबर के हिसाब से जो भी पॉलिसी जो भी प्रोग्राम बननी है वो बनेगी
1: जी। आपने दिल्ली की बात की और जनगणना की जो तारीख है वो भी हमें बताई। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमें कुछ और राज्यों के बारे में बताएं।
0: जी बिल्कुल, देखिए जैसे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमेशा ये समय सीमा दे रखा है कि अप्रैल से लेकर सेप्टेम्बर इन महीनों में कोई 30 दिन में आप हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दिल्ली के लिए जैसे MCD एरियाज के लिए अभी ये 16 मई से लेके, मतलब जस्ट हमारे सेल्फ एनिमेशन खत्म होती है 15 मई, 1 मई से लेके 15 मई हमारे सेल्फ एनिमेशन होगी
1: जी,
0: 16 मई से लेके 14 जून तक हमारे HLO होगी MCD एरियाज में
1: जी।
0: तो इस तरीके का बाकी स्टेट भी, बाकी यूनियन टेरिटरी भी ऐसे अपना टाइमलाइन भी पहले से ही वो नोटिफाई कर रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपका पंजाब जैसे स्टेट में अभी 30 अप्रैल से लेके 14 मई ये उनका सेल्फ एनिमेशन का पीरियड है
1: जी,
0: और उसके बाद 15 मई से लेके 13 जून उनका HLO का टाइम है। और आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे 7 मई से लेके 21 मई तक उनका सेल्फ एनिमेशन है, और 22 मई से लेके 20 जून उनका HLO का पीरियड है
1: जी।
0: हरियाणा का सेल्फ एनिमेशन का जो पीरियड है वो 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल और 1 मई से लेके 30 मई उनका HLO का पीरियड है
1: जी।
0: तो ऐसे स्टेट अपने अपने सेल्फ एनिमेशन और HLO का पीरियड को भी वो नोटिफाई करते हैं
1: जी,
0: तो पब्लिक को भी पता रहता है कि इसी टाइम में ही एनिमेटर आएंगे, उसके बाद में भी कोई आएगा तभी उनको हमें जानकारी नहीं देनी है
1: जी।
0: तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियर है कि कौन आएगा, और उनको अगर पहचानने के लिए हमें क्या क्या देखनी है, जैसे सर ने बताया उनका आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए
1: जी,
0: और टाइमलाइन भी फिक्स है, क्या सवाल पूछा जाएगा वो भी फिक्स है
1: जी,
0: और आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है चाहे कोई भी हालत में हो
1: जी,
0: आप जो कहेंगे वो उनको रिकॉर्ड करेंगे, तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियरली है। तो इसलिए पब्लिक को पूरे दिल से मतलब तहे दिल से उनको यहाँ पे सपोर्ट करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करनी चाहिए ताकि सेंसस सही ढंग से हो पाए।
2: चाहो तो दिल्ली और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी टाइमलाइन फिर से बता दीजिए।
0: जी सर, दिल्ली के लिए अभी जो MCD एरियाज जो है
1: जी,
0: इसमें कुल 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं न्यू दिल्ली को छोड़ के। तो यहाँ पे अभी सेल्फ एनुमरेशन जो होगी वो 1 मई से लेके 15 मई तक, और उसके बाद ही HLO होगी जिसका टाइमलाइन है 16 मई से लेके 14 जून
1: जी।
0: और राजस्थान का भी यही टाइमलाइन है, मतलब 1 मई से लेके 15 मई तक सेल्फ एनुमरेशन होगी, 16 मई से लेके 14 जून तक HLO होगी। उत्तर प्रदेश का जो SC जो सेल्फ एनुमरेशन का जो टाइमलाइन है वो 7 मई से लेके 21 मई एंड 22 मई से लेके 20 जून तक HLO होगी
1: जी।
0: हरियाणा का 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल सेल्फ एनुमरेशन होगी, 1 मई से लेके 30 मई तक HLO होगी। तो HLO हर जगह 30 दिन का ये फिक्स है ये टाइमलाइन।
2: HLO का मतलब है जहाँ पे एनुमरेटर घर घर जाएंगे जी।
1: जी, तो अजय जी चलते चलते हमारे माध्यम से आप सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं सभी लोगों से सहयोग की अपील करना चाहता हूँ
1: जी। तो बहुत बड़ी चुनौती ये सामने है, बहुत बड़ा काम है, और आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी जो दोस्त हैं, श्रोता मित्र हैं, वो समझ गए होंगे कि कितने लंबी प्रक्रिया है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो हमें भी अपनी ओर से सहयोग करना है, और जैसा अजय जी ने कहा कि सहयोग की अपील जो है वो विभाग हम सभी से कर रहा है। सही जानकारी दें, समय से जानकारी दें, सतर्क भी रहें, लेकिन साथ ही जो परस्पर भरोसा है वो बनाकर रखें, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है जनगणना की, ये कहीं ना कहीं दीर्घकालीन उद्देश्य के साथ में है। इसके लक्ष्य यही है कि हमारा लाभ हो सके, हमें फायदा पहुंचाया जा सके। तो अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपको कहती हूँ। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें जनगणना के विषय में बहुत विस्तार से ये जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: आभार आप।
1: जी डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में ये पूरी प्रक्रिया आपने हमें समझाई, और अब हमें पता है कि कौन सी वेबसाइट है, क्या प्रक्रिया है, क्या तारीख है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो जानकारी आपने हमारी बढ़ाई है उसके लिए आपके आभारी हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ, मैं नीलम अलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्म निरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 3 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सीएपीएफ और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुचारू और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया के लिए मतगणना केंद्र के अंदर ड्रोन, मोबाइल फोन और ज्वलनशील वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फैल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों

की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसकी संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:11 और 9 सेकंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम निशिगंधा। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज के साथ।

मिलन की रुत तो है और इस रुत में मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़िए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये वो वक्त है जब दो दिल एक सा सोचते हैं और शायद समझते भी एक सा ही है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जीने के लिए बस यही जोश होना चाहिए। आपको पता है कभी कभी ना हम थके नहीं होते हैं, बल्कि एक ही रूटीन लाइफ जीकर बोर हो जाते हैं। हर दिन वही चेहरे, वही बातें और वही हम सब खुद भी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम मोबाइल को ही अपडेट ना करें बल्कि खुद को भी अपडेट करें। अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ में।

मुझे ऐसा लगता है जब दिन इकरार के हों तो बाहर के दिन अपने आप आ जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसे दिन आए तो उन्हें जल्दी जल्दी जी लेने की कोशिश करना, क्योंकि ये दिन रोज़ रोज़ नहीं आते और ना ही लौट कर आते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

पता हम सभी को होता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। एक बात बताइए, कभी आपने ऐसा किया है कि सब कुछ पता होने के बाद भी अनजान बनने की कोशिश की है? अगर हाँ तो मैं आपके साथ हूँ। कभी कभी हर बात मान लेना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में।

सच में गाओ, इस तरह के गाने मूड फ्रेश तो कर देते हैं। कभी कभी इस तरह के गाने भी सुन लेने चाहिए ताकि दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिल सके। जब हमारा मूड इस तरह का हो गया है थोड़ा सा शरारती, तो एक गाना और सुन लिया जाए इसी तरह का। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान हैं। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकेंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ।

फिल्म मुगले आजम से लता मंगेशकर की आवाज में सुना आपने ये गीत। संगीत था नौशाद साहब का और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था के आसिफ ने। ये फिल्म भारतीय सिनेमा में क्लासिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। और अगला गीत आशा जी की आवाज में, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से।

1962 में आई फिल्म साहिब, बीवी और गुलाम से सुन रहे थे आप ये गीत, और आवाज थी आशा जी की, संगीत था हेमंत कुमार का, और गीतकार थे शकील बदायूनी। इस फिल्म का निर्देशन किया था अबरार अलवी ने, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मीना कुमारी, रहमान, वहीदा रहमान, और इस फिल्म में मीना कुमारी द्वारा निभाया गया छोटी बहू का किरदार भारतीय सिनेमा में एक बहुत ही प्रभावशाली चरित्रों में से एक माना जाता है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये फिल्म बिमल मित्र के उपन्यास पर आधारित थी। और अब हम सुनते हैं अगला गीत रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, फिल्म शगुन से।

1964 में आई फिल्म शगुन से सुना आपने ये गीत, और आवाज थी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1964 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी वहीदा रहमान, कमलजीत, नज़ीर हुसैन, अचला देवी, निवेदिता, प्रतिमा देवी, चांद उस्मानी और नाना पलसीकर ने। फिल्म की शूटिंग बॉम्बे और नैनीताल के महबूब स्टूडियो में की गई थी और इस फिल्म में जो जितने भी गीत थे वो लिखे थे साहिर साहब ने और इन गीतों को संगीत से सजाया था खय्याम साहब ने। और अब सुनते हैं हम अगला गीत लता जी की आवाज़ में फिल्म देवदास से।

वक्त हुआ है 1:38 और 35 सेकेंड। स्वादिष्ट पुलाव 1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। फिल्म का नाम था मिस मैरी और ये फिल्म 1957 में आई थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मीना कुमारी ने और साथ ही इस फिल्म में किशोर कुमार, जैमिनी गणेशन ने भी अभिनय किया था। संगीत हेमंत कुमार का था और गीत एवं संवाद इस फिल्म के लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने। अगला गीत हम सुनते हैं तलत महमूद की आवाज़ में, फिल्म देख कबीरा रोए।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। वक्त हुआ है 1:50 और 22 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स आई के लिए के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि

ख्वाबों से ना जाओ कि अभी रात बहुत है, ख्वाबों से ना जाओ कि अभी रात बहुत है, पहलू में तुम आओ कि अभी रात बहुत है, जी भर के तुम्हें देख लूं, तस्कीन हो कुछ तो मत शमा बुझाओ कि अभी रात बहुत है, कब पौ फटे कब रात कटे कौन ये जाने, मत छोड़ के जाओ कि अभी रात बहुत है, कट जाए यूं ही प्यार की बातों में हर एक पल, कुछ जागो जगाओ कि अभी रात बहुत है, ख्वाबों से ना जाओ कि अभी रात बहुत है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी अपनी रात की हमसफर मंजू को। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

वो नहीं मिला तो मलाल क्या, वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया, न गिला किया न खफा हुए, यूं ही रस्ते से जुदा हुए, ना तू बेवफा ना मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया।

0: जाने कब तक तेरी तस्वीर निगाहों में रही, जाने कब तक तेरी तस्वीर निगाहों में रही, हो गई रात तेरे अक्स को तकते तकते, मैंने फिर तेरे तसव्वुर के किसी लम्हे में तेरे तस्वीर पे लब रख दिए आहिस्ता से।
1: कम ऑन अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे।
2: हाँ, कम ऑन अरुण, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन यार, कम ऑन यार।
3: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
4: अरे ये क्या हुआ, ये तो शम्माई बुझ गई। अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिर तो नहीं गया
1: क्या मालूम।
4: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं?
3: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, कोई दिखाए मोहब्बतों के शराब मुझको, मेरी निगाहों से बात करना कोई तो सीखे।

कोई मिसाल नहीं है तेरी मिसाल के बाद, कोई मिसाल नहीं है तेरी मिसाल के बाद, मैं बेख्याल हुआ हूँ तेरे ख्याल के बाद। बस एक मलाल पे तू जिंदगी तमाम न कर, बड़े मलाल मिलेंगे मेरे मलाल के बाद।

तुम लौट कर आओ ना आओ, तुम लौट कर आओ या ना आओ, चाहो या ना चाहो, जो तुम्हारा इंतजार करता है तुम्हें आधा पा लेता है।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना गोयल। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरला में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित है और भविष्य में अपार संभावनाओं से भरा है। जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान हैं। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद रहने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल जो हमेशा आपके दिल के करीब रहता है, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम हमराही में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं 60 और 70 के दशक के बेहतरीन नगमे। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हसीना मान जाएगी फिल्म के इस युगल गीत के साथ।

दोस्तों, हमरा ही एक ऐसा कार्यक्रम जहां बातें होती हैं दिल की, उन जज्बातों की जो अक्सर होठों पर आकर भी खामोश रह जाते हैं। आज की रात उन रिश्तों के नाम जो कभी कहे नहीं जाते पर हर पल महसूस होते हैं।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी छोटी सी मुलाकात। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ बन जाते हैं। ना कोई नाम, ना कोई पहचान, बस एक एहसास जो हर धड़कन में बस जाता है। शायद वो दोस्त होते हैं या शायद कुछ और, पर हम कभी पूछ नहीं पाते और वो कभी हमें बता नहीं पाते।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत था फिल्म दो कलियों से। कुछ यादें बारिश की तरह होती हैं, बिना बताए आ जाती हैं और दिल को भिगो जाती हैं। वो पहली मुलाकात और वो खामोशियां जो बहुत कुछ कह जाती थीं, आज भी जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे वो पल फिर से जी रहे हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत था फिल्म अनजाना से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:33 और ठीक 47 सेकेंड।

मोहब्बत हमेशा इजहार नहीं मांगती, कभी कभी वो सिर्फ एहसास होती है। किसी का इंतजार करना बिना ये जाने कि वो आएगा या नहीं, किसी के लिए दुआ करना बिना ये जाने कि वो आपका है या नहीं है, यही तो होती है खामोश मोहब्बत।

दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसको आपने कभी नाम ना दिया हो? अगर है तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि शायद आपकी कहानी किसी और की भी हो।

आज की ये रात उन रिश्तों के नाम रही जो बिना नाम के भी सबसे खास होते हैं। याद रखिए, हर रिश्ता बोलता नहीं, कुछ रिश्ते बस महसूस किए जाते हैं, और जो महसूस होता है वो ही सबसे खास होता है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी दो रास्ते। पहली मोहब्बत एक किताब की तरह होती है जिसे हम बार बार पढ़ते हैं और हर बार कुछ नया महसूस करते हैं। दिल की धड़कन तेज, बातें कम, मुस्कान ज्यादा, यही तो होती है पहली मोहब्बत।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी नाइट इन लंदन। हर पहली मोहब्बत पूरी नहीं होती, पर जो अधूरी होती है वो सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती है। पहली मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस याद बनकर मुस्कुराती रहती है।

दोस्तों, ये था हमराही का सफर। मैं आपकी हमराही अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक अपनों को महसूस कीजिए और दिल की सुनिए। नमस्कार।

0: की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का
1: तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित है और भविष्य में अपार संभावनाओं से भरा है। जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है, जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं लिया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और आंधी तथा तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज गरज के साथ तेज वर्षा की आशंका जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, इस पवित्र प्रभात बेला में आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम अरुणिमा में। मैं हूं आपकी साथी अर्चना गोयल। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की सुबह में हम जुड़ेंगे मन, आत्मा और ईश्वर का एक सुंदर संगम। सुबह का ये समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सुंदर अवसर है। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं ईश्वर की प्रार्थना के साथ।

बहुत ही खूबसूरत सी प्रार्थना भी आपने सुनी, फिल्म मुजरिम से आवाज थी साधना सरगम की। दोस्तों, जब हम सुबह उठकर ईश्वर को याद करते हैं तो हमारे दिन में एक अलग ही ऊर्जा बढ़ जाती है। आज का भाव है, हे प्रभु आपकी कृपा से दिन शुरू हो, मेरे हर कर्म में आपका आशीर्वाद बना रहे।

अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब मन शांत होता है तब जीवन सुंदर लगता है। एक छोटी सी सीख, अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो तुरंत खुद से कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सकारात्मक हूं।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी गोपी। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:28:56। मैं आपके साथ अर्चना गोयल, बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा समय खुद के लिए, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो आपको शांति और शक्ति दे रहा है। हर सांस के साथ आप ईश्वर के और करीब जा रहे हैं, क्योंकि मन ही मंदिर है।

आज नहीं कल सही पर मेहनत रंग जरूर लाएगी। हौसलों को जरा संभाले रखो, हर कोशिश काम आएगी। थोड़ी देर भले लगे राहों में, पर मंजिल करीब आ जाएगी। इम्तिहानों की अंधेरी रात के बाद जीत की सुबह मुस्कुराएगी।

लाय उठाय लियो गिर नक पर बंसि बजावत धेनु चनैया जग के मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।